तो चेनिक तो गोल कसरता ब्रो वो चेनो अगेन को नी तो उसको चप चिगे गोल से थी नहीं ले पे तू तक तो गोल खबो का मनुत इन कसर वो चुतन ये कैसे भी गोल से अगे मिन के सुए चेनन को मुचे चने ने के नबो इगे सुरु द चे म्याच को अब तीन दे तने तिन गोल अतिए को गोल के सुए चबो ने इन जोकी नेट अब जे मंगे मगे मे उज चतन को अराका WH11 अक हराका WH301 चतरे का सरता भी तू सिक साइनी अगो बोग लगेंगे एक्टिव टीम गिट योग असिगेस Kambuni ta Western Seed kutunye geswek alago u, aminika 403, tibe kasartane nuach asigas, agubu ane kukororon kunya lilin. Aminika 505, chimange memyanu agege, agubu nruut chemyache. Aminika 507, chitinye mubik chegimen, agunya lilin kubota kukororon en silage. Aminika 508, chigisene bande kechang, agubu nruut chemiten baraga. Men kusirin kasare ton baroptane nuach. Keri ilige baisin keswek che yanotin kubun Western Seed maize. Rute Jindraini, Agro Dealer, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Tagatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyepchi, Tadudye Tab, Mese Tab Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.

ठीक है नंबर सिक्स। ठीक है थी नंबर सिक्स पोडा। टिकट नंबर सिक्स गुरुची ने चेप चेप कुल जगह टिकट नंबर सिक्स नंबर पौड़ा यानि पौड़ा न मोगियो चिनो इसी रेगे ने ने इसी रेगे कुंजी ने मम्मी चिने और चिन अंगे मचीबा के नी बगनी हम्म। Ticket number six. Ticket number six. Take an advantage of your to speak. Ticket number six. Ticket number six. Kurungo. Yegas Nigel Anderson. Anderson. Anderson. Anderson. Anderson. Anderson. Anderson. Anderson. Taji Engines. Anderson. Where Anderson? Yamune Imiano Kurezo, guy, you mean we? Vagabru Netago men, I'm Galia. Arab Jeriana, are you business? Congratulations, you're checking about that number 150,000. Congratulations, Pongas, Sana Matilo, you're the missing one, isn't it? Pas, agak terguna ni tuan dapat boda. Mati nyoi. Ucapmu anak kau cipi ata. Ama cacing big taman. Kita cincin 20,000 coba mbuzi. Tiket number two. Tiket number two. Ama cipi 10. Kita cincin 20,000 coba mbuzi. Ibi al jige ge jire ko ibi al jige buze ibi al jige buze
Yel jige Mbuzi. Ticket number 2. Ticket number 2.